एक कै हरी हरी ए ऐसा एक शुभ ते सच्चा विचार है जिसनू एक सच्चा ते सुच्चा भगत ही अपने जीवन दे विच कह सकता है क्योंकि जिसका विचार एक परमात्मा दे नाल मिल गया जिसका हर रोम रोम प्रभु चरणा दे विच रम गया और जिसका हर श्वास परमेश्वर दे नाल मिल गया ऐसा भगत ही ये कह सकता है कि हमारे एक है हरी हरी। आन अवर सिंजान ना करी ओ परमात्मा अपने भगत नू गुरु राही नाम देवांदा है जैसा कि मालिक ने शब्द दे विच फरमान कीता है।

जप भी करता है और यथा शक्ति अगर ज्यादा कोशिश करे ते तप भी कर लेंदा है। आम देखण दे विच आउंदा है कि रब दे नां ते कई व्रत भी रखते हैं।

ताप जो तप है, व्रत है, नेम है, आचार तो मतलब करैक्टर है मनुख दा, और व्यवहार जो रोज दा व्यवहार करदा है, जात जो कम तो पहचानिया जांदा है। साहिब फरमान करदे हन कि ए सारा कुछ जे मनुख करदा होया अपने गुरु दे अर्पण कर देवे ते मानो के जो त्याग दे विच उसनु सुख प्राप्त होवेगा, जो शांति प्राप्त होवेगी, ओहो ही सच्चा सुख है और ओहो ही सच्ची उसनु शांति प्राप्त होवे। साहिबां दा फरमान है कि जे कोई ये चाहे कि मैं महा आनंद दी प्राप्ति कर लवां, ते महा आनंद दी प्राप्ति है कि उस मालिक दी कीर्ति कीती जावे, उस मालिक दा जस गाया जावे। जैसा कि गुरु नानक पातशाह ने अपने जीवन दे विच कीता, अपने जीवन दे विच उन्हां ने होर कोई योग नहीं कीता, इको ही योग कीता कि उन्हां ने अपने प्राणा राही प्रभु दी कीर्ति कीती। इतना गाया प्राणा करके, इतना गाया कि उन्हां दा जप ही ज्ञान हो गया, उन्हां दा तप ही ज्ञान हो गया। और साहिब फरमान करदे हन कि जेड़ा उस परमात्मा दी कीर्ति सच्चे दिलों करदा है, ओ मालिक दी प्राप्ति दे विच सफल हुंदा है।

परम सत्कार योग साध संग जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़भागियों दूरों दूरों चल के करो गीत अंधिया नूं संकोच के शरदा प्रेम भावना लैके जागत जोत सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी दे चरणा विच पुजे आके गुरमुख प्यारियां तों गुरबाणी दा कीर्तन गुर इतिहास सरवण कीता। जिन्ना समा होर महाराज बख्शदे ने अज इस पंडाल दा पंजवां समाप्ति दा दीवान है। सारियां संगतां गज बज के बोल के शरदा भावना नाल जिहड़ी संगत बाद विच आ रही है शांति दे नाल गुरु महाराज दा अदब मुख रख के जिथे जिथे जगह मिलदी है सतगुरां नूं हाजर नाजर समझ के बैठना ते लाहा प्राप्त करना। बहुत वड्डी कृपा होवे उदों सतगुरु पातशाह जी कृपा करदे ने नगरां नूं गुरमुख प्यारियां नूं घर विच सेवा ते सिमरन दी दात बख्शदे ने। बाकी दातां जरूरी हन जीवन दा निर्वाह माया गुजरान है बहुत जरूरी ने पर मनुष्य दी समझ ज्ञान इस तल ते रुक गया कि अपनी जरूरत नूं मंजिल समझ बैठे। एक मंजिल हुंदी है एक लोड़ हुंदी है जरूरत। जरूरत तो बिना मंजिल ते पुजिया नहीं जा सकता पर जे मंजिल ना आई ते लोड़ां व्यर्थ गईयां। जरूरत ते मंजिल इनू जटकी भाषा विच समझ लो जो कणक बीजी गई है रे बूटे दी जरूरत है पानी बूटे दी जरूरत है गुडाई करनी बूटे दी जरूरत है। ते गुरमुख प्यारियो मंजिल की है झाड़ निकले दाने पैदा हो। हुण दोवां दा संबंध किन्ना है ते गुरमुख प्यारियो सेवा तो बिना खर्च तो बिना बूटे दी जरूरत तो बिना झाड़ नहीं निकलना। पर जे झाड़ ना निकलिया वो रे पानी व्यर्थ गया के आखो झाड़ की है वो भी तुहाडे सामने दी किरिया है। गुरबाणी ने तो फैसला किया आ जिहड़ी बाणी पढ़नी है ना नितनेम करना ये क्यों शुरू किया कीर्तन क्यों शुरू किया कथा क्यों शुरू की लो जे तुसी सच गल समझो इन्हां दी लोड़ नहीं सी ये मजबूरी है मनुख दी। समझ लो गुरमत विचों एक सानू अख दती है एक गुरमुख प्यारे ओ कन दता है फिर मत दती है समझण वास्ते। जेड़ा आदमी देख के समझ जावे उन्हूं बोलण दी लोड़ नहीं हुंदी। जेड़े बंदे नूं देख के समझ आ जावे आ चीज आ है उन्हूं बोल के दसण दी लोड़ नहीं। जिन्हूं दिखे ना उहदे वास्ते बोलना ही साधन है। अंधा बंदा उन्हूं कहना पऊगा तेरे मूहरे चिक्कड़ है भी पासे हो जा उत्थे बोलण दी लोड़ पई
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ? ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਕੇ ਖੁਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨੀ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨੀ। ਜੇ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਦਿਖ ਜਾਵੇ, ਮੂਹਰੇ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੂਗਾ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਭਾਈ ਗਿੱਲਾ ਮੂਹਰੇ ਕੰਡੇ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਪਾਸੇ। ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਦੇਖ ਵਰਤੂਗੀ ਹੁਣ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਥਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਹਿਲਾਉਣ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਲੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦੂ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਦਊਂਗੇ? ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਬੋਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

मान गए। सत्संगी सज्जन पवित्र आत्मा गुरमुख सज्जन जितने भी माई पाई साहेब गुरु ग्रंथ साहब पातशाही के पवित्र कदमा अंदर अमृत वेले दिया हाजरियां भर रहे हो सोने दरबार प्यारे दरबार सतगुरु जी के पवित्र चरणों का आनंद ले रहे हो। बहुत बख्शिश दोगे बहुत गुरु कृपा करे ता अपनी सिर्फ सलाघा बख्शदा है सिर्फ सलाघा उन्होंने बख्शदा है जिन्हों उत्ते गुरु का कर्म होए जिन्हों ते गुरु की बख्शिश मेर अति रहमत होवे उन्होंने ये सत्संग दियां कड़ियां नसीब होंदियां हन। कैसा आनंद है शब्द विच कैसा रस है शब्द विच पंक्तियां जो पढ़ रहे सां जपो ता एको नामा एक नाम नाली जोड़िया है एको नाम नाली सानू जोड़िया होर किसे नाल नहीं जोड़िया। एको जप एको साला एक सिमर एको मनया एक के गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवान दूजा काहे सिमरिए जो जमे ते मर जाए एको सिमरो नानका जो जल थल रहा। पर सिमरना ही बड़ा मुश्किल बड़ा कठिन है कुछ दुनिया के धंधे सौखे है एक प्रभु का सिमरन सब तो औखा जी बड़ा कठिन जी कोई समय ली एकाग्रता बख्श नहीं जितने मेरे सज्जन बैठे हो मिंट गिणवे रह गए 94 मिंट रह गए वो मिनटा असा सफल करना है। सब तो पहला मन चित बिरतिया टिकाव लियाओ एक बार प्यार नाल आखो सदना आ वेख लिया जी नू हुणे किन्ना बिखड़ा है किन्ना मुश्किल है नहीं आख्या जांदा सारे कोल आख्या ही नहीं गया सारे आपो अपने ध्यान विच है ये कठिन जी कुल दुनिया के धंधे सौखे ने एक वाहिगुरु आखना मुश्किल है एक वाहिगुरु आखना कठिन है ये मैं नहीं कह रहा ये गुरु बाबा कह रहे रोज नहीं पढ़ते आखण औखा साचा ना बड़ा औखा है ये नहीं आख्या जाता आखो ना साधना वेख्या जी नहीं एवं तो नहीं बाबा जी बाणी च कहते आ बचन सुनियो बुरे काम को ऊट खलोया बैठा कर्म करना हो अधी रात दौड़ पैदा नींदर की परवाह नहीं सुस्ती की परवाह नहीं बरादरी की परवाह नहीं मां प्यो की परवाह नहीं रिश्तेदारां दी परवाह नहीं करना। बाबा जी कहंदे बुरे काम को ऊट खलोया ते अगली पंक्ति पढ़ी जे कदी नाम की वेला पह पह सोया वाहिगुरु आखण वेले नूं नींदर आ जांदी वाहिगुरु आखण वेले नूं उंगलान आ जांदी इहनूं सुस्ती पै जांदी इहदे कोल नहीं आख्या जांदा इह कठिन सौदा जे इह बिखड़ा सौदा जे नाले सुस्त आदमी ते आख नहीं सकदा सानूं ते कलयुग दिया होया सानूं ते कलयुग ने दबाया होया कुचलिया होया पैरां थले लताड़िया होया कलयुगी बंदा ते वाहिगुरु नहीं कह सकता ये ओही कह सकता है जिसे ते गुरु नानक जी कृपा होएगी। एक बारी आखो तुलसी जी का बचन एक पढ़िया जी बाबा जी ने कमाल कर दिती है तुलसी जी का बचन मैं कह रहा थानू आखण औखा साचा ना क्यों औखा है तुलसी जी ने शलोक उचारे जदों मैं पढ़ना जदों मैं संतान सुनाना मैनू भी आनंद आंदा है मैनू भी स्वाद आंदा है। की कहंदे तुलसी नाम जो राम को जिन्होंने रामायण लिखी है जिन्होंने राम का जीवन पेश किया बयान किया खोलिया खुलासा किया कहंदे तुलसी नाम जो राम को राम का नाम भगवान का नाम ईश्वर का नाम खुदा का नाम अल्लाह का नाम गाड का नाम परमेश्वर का नाम मेरे वाहिगुरु का नाम नाम सारे ही उदेश असा त्रेड़ा पाई असा विथा पाई असा दुआरा खड़िया कीतिया हुई नाम सारे उदेश नाम में कोई फर्क नहीं साढ़े जपन फर्क है। बड़ी प्यार की गल कह रहा तुलसी नाम जो राम को रीज लेओ चाहे खीज भावे रीत किल ले भावे खीज किल ले रीत का मतलब की होया प्यार नाल आखना श्रद्धा नाल भावना नाल सत्कार नाल भाव नाल भक्ति नाल ते खीज का की मतलब होया थोड़ी जी कागरता खीज का मतलब पंजाबी का लफज
ਫੜ ਕੇ ਆਖਣਾ, ਕੁੜ ਕੇ ਆਖਣਾ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਖਣਾ, ਇਹੋ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਆਖਣਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਮਜਬੂਰਨ ਉੱਠਦਾ, ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਲੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਲਸੀ ਨਾਮ ਜੋ ਰਾਮ ਕੋ ਰੀਝ ਲਿਓ ਚਾਹੇ ਖੀਜ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਫਲ ਦਿੰਦਾ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਲਸੀ ਨਾਮ ਜੋ ਰਾਮ ਕੋ ਰੀਝ ਲਿਓ ਚਾਹੇ ਖੀਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਪਰੈ ਸੋ ਉਗਤ ਹੈ ਉਲਟੋ ਸੀਧੋ ਬੀਜ। ਭਾਵੇਂ ਬੀਜ ਸਿੱਧਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਬੂਬੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੀਜ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਖੋਏ ਆਖ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਅਵਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ, ਐਵੇਂ ਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਆਖੋ ਨਾ, ਜਪੋ ਤਾਂ

आई है मूड़े, ओए मूरख मसा मसा तेरी वारी आई। वासुदेव तुद विसरिया, जिसनू याद रखना सी वो तैनू विसरी गया। इसलिए ओ वेला ना लैसी मूड़े, जां तू जम के वस पड़िया। जदों श्वासां दी पूंजी समाप्त हो जाएगी, ए शरीर एथे रह जाएगा। जम तेनू केरा कत लैणगे, क्या तू उदों कहेगा भई मैनू सेवा कर लैण दिओ, जां कोई नाम जप लैण दिओ, सत्संग कर लैण दिओ। हजूर कहंदे ने ना तेरी कोई सुनेगा, ना तू कहण जोगा ही होवेगा। इस लई भाई तू कल्या होया आया और परमेश्वर का नाम जपन लई आया। जिवें हजूर कहंदे ने कच पकाई इत्थे पाए, जदों मनुख संसार ते आउंदा तां इह कच्चा पांडा हुंदा, ते भले पुरशां दी सत पुरशां दी संगत करके इसने पक के जाना, क्योंकि मंडी दे विच मुल पक्कियां दा पैंदा। एक टके दा घड़ा लईए, उनू टनक के देखी दे भाई किते कच्चा तो नहीं, जे कच्चा है तो कोई कीमत नहीं। आख्या तू भी इत्थे पक्कण लई आया भाई, तेरा सिदक होवे अपने इष्ट ते अपने गुरु ते। ते फिर जदों पक के जाएगा ना, उस दी दरगाह विच तेरी कोई कीमत होवेगी, तेरा कोई सत्कार होवेगा, तेरे नाल गुरु प्यार करेगा, गुरु तेनू सद के अपने पास बिठाएगा। जिन्नी तेरा नाम ध्याया तिन को सद मिले। इसलिए हजूर कहंदे ने भाई ए सदड़े नित पै रहे हन, ते तू फिर भी सुता होया। आ अमृत वेले उठ के भाई सचखंड दे बार खुले हन, ते अपने जीवन नू सिमरन विच सेवा विच ला के सफल कर ले। तन गुरु नानक पातशाह इस शब्द विच अखीरली तुकां विच आप कह रहे ने, घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन, ए सदा नित पै रही।

जैसो गुरु उपदेसया मैं तैसो कहया पुकार। कह नानक सुन रे मना कर कीर्तन होए उधार। कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना। आप तरह

0: सतगुरु युग युग अटल चवर तख्त मालक दसम पातशाह हिंदी जग दी जोत शब्द अवतार संसार दे सांझे रहबर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र गोद विच दूरों नेड़ों चल के जिन्हें भी माई पाई सतसंगत हरी जस कीर्तन का लाभ उठाने के लिए गुरु दरबार भागे हो आओ अपने मन में एकाग्र करने की कोशिश करो अपनी सुरती अखा बाहर जाने तो रोको इधर उधर वेखन की कोशिश ना करो गुरु स्वरूप का ध्यान करो क्योंकि हरी जस कीर्तन सत्संग का पूरा लाभ ता ही प्राप्त हो सकता है जे साडे तन दे नाल मन भी इत्थे हाजिर होवे बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु
0: क्योंकि यह सब सुनाउणा मन नूं है तन नूं नहीं है तन तां इक जरिया है सो गुरु जी कहिंदे ने प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत जदों मन एकाग्र हो जाएगा गुरु शब्द दे नाल जुड़ेगा हरी जस कीर्तन च जुड़ेगा भुख दुख गर्मी सर्दी सब लगन तो हट जांदियां हन क्योंकि सेवक उही हुंदा है सतसंगी उही हुंदा है जिहड़ा भुख प्यास ते कंट्रोल करे गर्मी सर्दी सहार सकदा होवे दुख सुख की परवाह ना करे मान अपमान तो उपर उठे अते अपने मन नु अपने काबू विच रखे कंट्रोल करे बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु
0: सो यह साढ़े चंगे भागां दी निशानी है कलयुग का बड़ा भयानक समा है ऐसे समय दे गुरु की शरण मिल जानी सतसंगत मिल जानी अच्छा करके निश्चय करके यह साढ़े चंगे भागां दी निशानी है सो कदम सफल किते ने गुरु वाल चल के नेत्र सफल किते ने दर्शन करके सीस सफल किता नमस्कार करके मत्था टेक के अपनी जबान भी सफल करया करो गज बज के तिना हिस्सों के बोल के

जिज्ञासु कौन है, सत्संगी कौन है, जड़ा सवाल करता है जाके, हे गुरु हे महापुरशो मैनू दसो, मैं चरासी विच फसया होया हाँ, मैं हनेरे विच फसया होया हाँ, मेरी जिंद दुखां विच फसी हुई है, मैनू दसो कोई रास्ता, ये सवाल करता है।

0: बिन हर नाम ना शांत होए कित विद मन
1: धीरे।
0: किस तरीके दे मन धीरज भी चल जाए, किस तरीके दे मन की गति रुक जाए, किस तरीके दे ना ए मन जड़ा दशा दिशा में भजया फिरदा है, सुपने विच भी नहीं टिकदा, सुत्ता प्या भी टिकदा नहीं है, संगत विच भी नहीं टिकदा है, सब कुछ पाके भी टिकदा नहीं है। कबू जिगेड़ा ऊब चढ़ता है, कबू जाए पायाले, लोभी जेरा थर न रहता है, चारे कुंटा
1: पाले,
0: वस्तु नहीं मिलती दुखी हुंदा है, जदों मिल जाती है फिर होर वध दुखी हुंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो बिन हर नाम ना शांत होए कित विद मन धीरे, केड़े तरीके दे नाल मन धीरज विच आ जाए, किस तरीके दे नाल मन की गति धीमी पै जाए, कुछ कंट्रोल विच हो जाए। बिन हर नाम ना शांत होए, गुरु जी कहिंदे हन बाणी दे विच, रब दे प्यारे दसदे हन भाई असीं विछड़े हुए हाँ भाई, तू इस करके दुखी है, तू विछड़िया होया है, अपने मालक तो विछड़िया होया है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: अपने मालक तो विछड़िया होया है, तू अपने केंद्र तो टुटिया होया है, तू अपने धुरे तो अलग होया होया है, जिन्ना चिर तू नहीं मिलता उन्ना चिर तेनू दुनियावी शांति घड़ी दी घड़ी भावें मिल जाए, परंतु असल शांति नहीं मिलेगी। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: क्योंकि शांति भी तीन तरह की होंगी है, एक शरीर तल की शांति, शरीरक तल की शांति, शरीरक भोग पदार्थ खाण पीन दे नाल जवान थोड़ा चिर बस पेट भर जूगा, जवान थोड़ा चिर बस कह देगी, परंतु थोड़े चिर बाद फिर वो ही भुख लग जाएगी। इसे तरह मन, मानस भोग पदार्थ ते फिर कुछ चिर वास्ते मन तृप्त हो जाएगा, सदी भी तृप्ति नहीं है। आत्मक शांति जड़ी है जो परमेश्वर जुड़िया सत्संग सेवा से मन मिलती है, वही सदीवी शांति है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: वही सदीवी शांति है जो आके जाती नहीं है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो उस आत्मक शांति कहते हैं। सो नहीं तो गुरबाणी गुरदेव बहुत प्रमाण दे दे के खोल खोल के समझाते हैं, मैं तू बाकी छोटे मोटे की गल्ला छड़ दे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए
1: सुखिया।
0: सारी सृष्टि का राजा क्यों ना बन जावे हे मनुख, सारी सृष्टि का। बाकी माड़ी मोटी गल छोड़ो, छोटा मोटा कोई अपना बन जाना, कोई अहुदा मिल जाना, कोई इलाके का मालक बन जाना, कोई होर कुछ माड़ा मोटा ज्यादा कुछ बन जाना, सारी सृष्टि का राजा सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज फरमान करते हैं भाई, जेकर वह रब दे नाल नहीं जुड़िया, जेकर वह परमात्मा का नाम नहीं जपता, जेकर वह उस दाते नूं भुल गया है, फिर उसकी सारी सृष्टि की सृष्टि के मालक की हालत की है,

0: सगल श्रेष्ठ को
1: राजा दुखिया
0: सुखी के में होएगा पाए। हर का नाम जपत होए
1: सुखिया,
0: परमेश्वर का नाम जप के ही सुखी हो सकता है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो सत्संगत, हुण फिर असीं सोचदे हां भी नाम जपना कि सानू नाम जपन नाल ही सुख मिल सकता है। ये बड़ा औखा है नाम जपना, दुनिया छड़नी पवेगी, संसार का त्याग करना पवेगा। हां संसार का त्याग करना पवेगा, मोह ही दुखां का कारण है, सारे दुखां का कारण मोह है, सारे दुखां का कारण अज्ञान है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: फिर तो भाई बड़ा औखा हो जाएगा, दुनिया छड़ दी, सारी दुनिया किवें छड़ जावांगे, किवें सारी दुनिया जंगल नूं तुर जाएगी। फिर तो असीं जावांगे नहीं गुरुद्वारे, ऐसे साधुओं कित्थे जावांगे, नहीं। गुरु नानक जी ने सत संत कृपा की थी, दुनिया नहीं छड़ाई परंतु दुनिया का मोह छड़ाता। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: बोलो धन गुरु नानक,
1: धन गुरु नानक।
0: दुनिया तो नहीं छड़ाई, योगियों ने दुनिया छड़ाती, बड़े बड़े राजे पर्थरी वर्गे सात संगत तो उन्होंने कन्ना पाड़ के मुंदरा पवा दती, परंतु मन फिर भी शांत ना होए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: योग दे नाल भी योग सिद्ध आसन 84 ए पी कर रहे, बड़ी आरजा फिर जन्म हर सिंह संग ना
1: गहया,
0: तीर्थां दे बैठ गए, वेदां दे पाठ कीते, शास्त्रां दे पाठ कीते, बड़ी तरह दी पूजावां कीतियां, फिर भी मन शांत ना, पाठ परिवार वेद विचारियो निमर पहंगम साधे, पंच जना संग ना छोड़ के, अदक अहां बुद्ध बाधे प्यारे, इन विद मिल ना जाई, मैं किए कर्म
1: अनेका,
0: अनेकों ही कर्म कीते, मैं किए कर्म अनेका, हार परे स्वामी के द्वारा दीजे बुद्ध
1: विवेका,
0: बड़े जतन कीते, बड़े तरीके अपनाए, परंतु फिर भी मन शांत न होया। बोलो
1: सतनाम
0: भरथरी योगी श्री नारद जी की उपासना करते हैं, नारद जी की आराधना करते हैं, नारद जी के सुपने विच दर्शन हुए। हां भाई क्या चाहते हो? शांति, मुक्ति, परमेश्वर का मिलाप। 500 साल की मेरी उम्र हो गई है, कितने योग कमाले हैं मैं, रिधियां सिधियां भी प्राप्त हो गई, अजे भी कहते हैं हे नारद

0: हे नाथ, मैनू कोई ऐसा तरीका दसो। नारद जी ने पता है की कहा? नारद जी ने कहना कीता, हे पार्थर, इसका इलाज मेरे को नहीं है। मैं तेनों एक तरीका दस दिंदा हाँ, रास्ता दस दिंदा हाँ। संसार ते गुरु नानक प्रगट हो गए, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: हे पार्थरी, इधर उधर चोटा खाण की लोड़ नहीं है। दुनिया का मालक दुनिया ते आ गया है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: उत्थे तेनू शांति मिलू, तेनू सब कुछ मिलू, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: हे नारद जी, फिर मैनू कोई रास्ता दस दो, कोई ढंग दस दो, उन्हां दा कोई चक्कर चिन्ह दस दो, स्वरूप दस दो, किथे पैदा होए ने ओह। श्री दशमेश मांगू, मैनू दसो, मैं उन्हां दा दर्शन किवें करांगा, मैं उन्हां नू किवें मिलांगा, मैं किवें उन्हां दी शरण विच जावां। कहना कीता, हे पार्थरी, तू इस तरह नहीं मिल सकता। तू उन्हां नू अराध याद कर, बेनतियां कर, अरदासा कर, तेनू आपे ही मिल जाणगे। आके बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जिहड़ा उत्तम जिज्ञासु हुंदा है, उसनू गुरु खुद ही ढूंढ लैंदा है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जिहड़ा अधिकारी नहीं हुंदा, उहनू दर ते आए नू भी कई बार मोड़ दिंदा है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: अण अधिकारी नू तू याद कर, बेनतियां कर, सो वक्त आया, समा आया। ओही पार्थर, होर बहुत सारे योगी गुरु नानक नाल चर्चा को चर्चा करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, परंतु पार्थरी सवाल जवाब नहीं करता है, बोलो
1: श्री वाहिगुरु।
0: दुनिया की आदत है, सलाम जवाब दो बैं करे, मुंडो कोथा जाए, ना ही मत्था टेकदा, ना ही शंके करदा, ना ही सवाल जवाब करदा है, दोवें ही काम करदा है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ना ही सेवक, ना ही शंका। सो सत संगत पार्थरी ने सवाल जवाब नहीं किया, कुछ नहीं पुछया। बाकी योगी परीक्षा लेंदे ने अपने होमें दे विच आके, कई तरह दियां रिद्धियां सिद्धियां विखाउंदे ने गुरु नानक नूं, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: उन्हां नूं प्रभावित करन दी कोशिश करदे ने, गुरु नानक साडे योग दे विच आ जाए, किन्ना योग फैल जाएगा, साडा मत फैल जाएगा। पार्थरी ने सवाल जवाब नहीं किया, क्यों? क्योंकि पार्थरी नूं इशारा हो चुका सी, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: पहला योगी सी पार्थरी जिहड़ा गुरु नानक दी शरण विच पिया, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: गुरु अंगद देव महाराज भाई लैणे दे रूप दे विच देवी दे चाले जांदे हन, संग लैके जांदे हन। चोजी प्रीतम, रस्ते विच की सुनिया गुरु नानक दी महिमा, क्योंकि ये दर ऐसा है भाई

वंश मेरा खानदान वधे और दुनिया दे विच ए देखदे आ कि जिदे घर धी पुत्र ना होवे रिश्तेदार भी उन्हां नूं ताने ते मेणे मारदे ने।

नौकराणी ने सुनी। नौकराणी भजी भजी गुरु अर्जन देव जी महाराज दी तरमस पत्नी माता गंगा जी कोल गई और चरना ते सिर

बड़ी धूड़ उड़ रही है, कौन आ रहा है? ता सेवका ने कहा, बाबा जी गुरु के महल आ रहे ने पाव, गुरु अर्जुन साहब दे धर्म सुपत्नी आ रहे। ता बाबा बुढ़ा जी ने सहस बाबचन कीता, गुरु क्या नू किधरू भाजना पै गई। माता गंगा जी आए, लंगर छकाया, पर बाबा जी ने पुत्र वास्ते कोई अरदास ना की थी। माता गंगा जी उदास होके वापस चले गए और गुरु अर्जुन साहब नु कहा, महाराज बाबा बुढ़ा जी ने पुत्र वास्ते अरदास नहीं की थी, सगा कहा कि गुरुआ नु किधरू भाजना पै गई, गुरु के महल नू

तो आप कराएं। ते हुन तुसी दावा करके कह सकते हो जदों घरों जाओगे ये दावा करके कह सकते हो कि किसी ने बैकुंठ नहीं वेख

माता गंगा जी अपने महलों में चले गए ते श्री गुरु अर्जन देव पातशाह ओही पुराना कंबल अपने पावन शरीर ते ओढ़िया होया ते जोड़ियां विच आके खलो गए। हजूर कहंदे गुरसिखो जाओ तुसी गुरु रामदास साहब दा दर्शन करो ते तुहाडे जोड़ियां दी राखी मैं

बाबा राम राय ने देहरादून आके अपना डेरा लाया ते दून तो इस जगह का नाम देहरादून पै गया। हुण बाबा राम राय औरंगजेब दे खुशामदी बन गए ते गुरु घर दे नालों नाता इन्हां दा टुट गया। ते दूसरे पासे गुरु हर राय साहब जी ने अपना अंत समा जान करके हुण गुरुगद्दी अपने

मेरी चिंता मिट गई है पर मां ना मैनू डर आउंदा है ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आउंदी इसलिए कि तू मेरा सारिया थावां ते राखी करना सारिया थावां ते तू मेरा राखा है जे तू मेरे नाल है ते मैनू डर किसदा मैनू डर किसदा जे तू मेरे नाल है तो मैनू अग की करूगी जे तू मेरे नाल है तो मैनू कोई विपता संसार की सता नहीं सकती और मेरा कोई नुकसान और डरा धमका नहीं सकती मैनू क्योंकि तू मेरा राखा है सारिया थावां ते इसे लिए मालिक सतगुर सच्चे पातशाह जी ने फरमाया हजूर ने बड़े माण विच बड़े जोर विच किया कि एडा मेरा वाहिगुरु वड्डा है कि भावें मैं अग विच भावें मैं देग विच भावें तत्तियां रेता सीस ते पईयां पर मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी ये कौन कहेगा खसम वाला मालक वाला गुरु वाला जिहड़ा है ही बेगुरा वो कहेगा कि जिसनू कदी पिता दी गोद विच बैठन दा सुभाग समा ही नहीं प्राप्त होया वो मान की कर सकदा किसे ते जिसने कदी पिता कोलो अमृत ही नहीं पीता वो कह सकदा है कि मेरा बापू मेरा पिता मेरे वास्ते आ करेगा नहीं नहीं कह सकेगा उनू अपनी कमजोरी दा पता है लेकिन सतगुर सच्चा पातशाह बड़े तान नाल बड़े मान नाल हजूर फरमाते ने ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिव लाई राख लिए तिन रखनहार सा ब्याध मटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पये उस मान विच आके तान विच आके असी कौन हां सारे बच्चे सारा परिवार सतगुरु जी दा बच्चे और बच्चियां परिवार मालिक सतगुरु सतगुरु परिवार दा मालिक है साडा तो असा ए तो कदी नहीं कहना कि असी सतगुरु दा परिवार हां पर आपां पढ़ लईए जरूर सारी संगत पढ़ियो गुरु अर्जन देव अकाल पुरख की गोद विच ते सारी संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा उते फोटो ते इवें आएगी ना पता ते इवें लगेगा ना अकाल पुरख की गोद विच अकाल पुरख दे चरणा उते साहिब गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह और उन्हां दे चरणा उते आपां सारे उस मान विच आके सतगुर सच्चे पातशाह दे हजूरी विच जिवें उन्हां ने माण कीता आपां वी माण करिए ने सारे तो बोलो सारे बीबियां उच्ची आवाज विच और बड़े कंट्रोल विच गलबात छोटी छोटी साडे को नहीं आउणी चाहीदी क्योंकि सत्संग है सचखंड है वैकुंठ है इसकी महिमा का पारावार नहीं जे असीं नहीं सोचांगे तो बेअदब होवांगे सारे पढ़ियो

तेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण को न चितार दा

राग गौड़ी माला विच ऋषभ गंधार धैवत सुर कोमल अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दी जाति संपूर्ण वादी धैवत संवादी ऋषभ अते समा राग दा पहला पैर है। इस राग विच पाया लाल रतन मन पाया शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर करतार सिंह।

लिबड़े लिथड़े सतगुरां ने याद किया है धन पाक बुलाया है बहुत खुशकिस्मती उस तरह आ गए सतगुरां ने दो कदम अगे होके अपनी छाती ना ला के आख्या नंद लाल मन साफ हो गया है दिल साफ हो गया है दिल तुप गया है दिल पवित्र हो गया है दिल पाकीजा हो गया है इथो तक के दिल हुण पुनीत हो गया है तू ते मैं एक ही बात हो गई है हा हा हा सतगुरु तुसी किथे ते मैं किथे आखन लगे तू ते मैं हुण इको जोत हो गए हां फिर भाई साहब जी आखन लगे हे मालक तेरी निगाह का मैं धनवादी हां तुहाडी मेहर का मैं धनवादी हां मेरे ते जो कर्म किया उहदे लई मैं तुहाडा बहुत मशकूर हां लेकिन तुसी समुंदर हो शौ सागर हो ते सागर का कोई पारावार नहीं हुंदा ये ठीक है मैंने तुसी अपना रूप बना लिया है लेकिन मैं ते इदां दी बात है तुम्हें तुसी शौ सागर हो मैं विच एक लहर हां सतगुरु कहन लगे तू मेरा रूप है आखन लगा जी ठीक है लेकिन एक गल यकीनन है कि समुंदर विच हीरे बन सकते ने मोती बन सकते लाल पैदा हो सकते ने पर कदी थाली दे पानी विच भी ऐसा हो सकता है सतगुरु ने इस नूं जो बनाना सी एन पवित्र बनाना सी वह बनाता ते छाती ना ला लिया लेकिन सतगुरां दे बगलगीर होया हो।

एक कागज लो, उस कागज ते ए लिख दियो, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं, बेशक चले जाओ। अज भाई मान सिंह ने अपनी जान नो प्यारी समझे है।

अपने घरां नूं पहुंचे। घरवालियां ने पुछिया, सुनाओ की हाल है गुरु साहब दा, आनंदपुर साहब दे किले दा की हाल है, की हाल है साहबजादियां दा, गुरु के परिवार दा, सिखां दा। तां भाई मान सिंह अपने परिवार नूं कहण लगे, असी ते गुरु नूं किले विच छड के आ गए, किले नूं घेरा पिया, लखां दी तादाद विच फौज है, असी गुरु नूं छड के

सिख ने ए गल करां वालियां ने सुनी उन्हां दियां अखां गुस्से नाल लाल हो गईयां। उन्हां ने कहा ठीक है अज गुरु नूं छड आए अपनी जान नूं प्यारी समझ के एक दिन ते मरना है कदू तक जीवोगे पतित होके जीवना दुनिया दे डर तों सिख गवा के जीवना को जीवना है एक दिन ते मरना है जे लड़दे मर जांदे गुरु दे सामने शहीद हो जांदे गुरु तू अपनियां जाना वार देंदे ता असी शुकर करना सी साडे पति धन ने जेड़े सेवा करदे मरे अज तुसी सिखी गवा के आए हो गुरु नूं छड के आए हो मौत तो बहुत डर लगदे दुनिया दे सुख प्यारे लगदे इस तरह करो इस साडियां चुनियां लै लो पग्गां ला दियो अपनियां चूड़ियां ला के अगे रख दित्तियां ए चूड़ियां पा लो तुसी घरां विच बैठो ए कमर कसे खोल के सानू दियो कमर कसे करके

कई फिटकारा पिया, खून ने फिर उबाला खादा कि मना बड़ी भुल की थी। दुनिया दे सुख बदले गुरु नु छड़ दिता, सिखी छड़ दिती, पर जिदी कोई इज्जत नहीं ओदा भी कोई जीवना है, सिर झुका के जीवना कोई जीवना है। धर्म वास्ते मरना, धर्म दे राह ते चल के मरना, देश कौम दी सेवा करदिया मरना असल विच जीवन है। पर हुण ए नहीं पता कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज किस पासे, पता लग चुका है आनंदपुर साहब दा किला गुरु साहबां ने छड़ दिता, क्योंकि सिखां ने बड़ा जोर पाया किला छड़न वास्ते। किला छड़िया जिन्ना कुरान शरीफ दी कसम खादी उन्ना कसमां तोड़ दित्तियां, जिन्ना आटे दी गऊ बना के कसम खादी उन्ना भी कसमां तोड़ दित्तियां। गुरु साहबां दे काफले ते हमला कर दिता, इस हमले दे विच गुरु साहबां दा बड़ा

संगता, गुरु का जस गुरु के दर्शन करन वास्ते फिर आन लग पईयां, ओही रौनकां फिर लग गईयां, पुत्रां दे शहीद होण दा

जिन्ना बल सी सारा ला दिता है, हुण ते पासा परतन दी भी हिम्मत नहीं। हुण कर कृपा मैनू दर्शन दे, ओ बिदावा पाड़ दे जिदे ते लिखे है तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं।

रुमाल दे नाल मुंह पूंझिया, चेहरा साफ कीता, पिता शहीद कराया, गम नहीं कीता। अखां सामने पुत्र शहीद हो गए, गम नहीं कीता। परिवार विछड़ गया,

नहीं, जिन्हें अमृत नहीं छकिया, गुरसिख परिवार विच जन्म लिया, सिखी विच पूरा नहीं, ना बाणी नाल जुड़िया, ना गुरु नाल जुड़िया, ना अमृत नाल जुड़िया, वो किवें पूरा हो सकता है। पूरा तो होया है भाई मास जिदा को जीवन नहीं चंगा, जिन्हें दुनिया का भला नहीं किया, जिन्हें ठगियां कीतियां, दुनिया नू धोखे दिते, अपने भले वास्ते लोकां नू दुख दिंदा है, वो जदू मरदा है वो कदी पूरा नहीं हुंदा। पूरा वो है जिहड़ा सच्चा जीवन जीउंदा है, जिन्नू रब मिले वो पूरा है, परमेश्वर पूरा है, ते उहदे प्यारे पूरे।